0: श्रोताओं सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि उस आंतरिक शक्ति का प्रमाण है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग और शांत बनाए रखती है। हमारे सामाजिक व्यक्तित्व जीवन में सहनशीलता ही वो धागा है जो रिश्तों को टूटने से बचाता है। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करने की क्षमता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। कहते हैं, जैसे एक विशाल वृक्ष तेज आंधी को सहकर भी फल देना नहीं छोड़ता, वैसे ही एक सहनशील व्यक्ति अपमान और कष्ट सहकर भी अपनी मानवता और अच्छाई नहीं त्यागता।
0: श्रोताओं अभी आपने सुना ही अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।

0: श्रोताओं, एस जानकी के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें मिश्रित खेती के संदर्भ में। समय के साथ साथ खेती बाड़ी की विभिन्न प्रणालियां विकसित हुई हैं जिनसे कि हमें लाभ होता है।

0: मिश्रित खेती में विभिन्न फसलों को एक साथ हम उगाते हैं। विभिन्न फसलों की वृद्धि का क्रम उनकी जड़ों की गहराई और उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। यदि दो फसलें जिनमें एक उथली जड़ वाली तथा दूसरी गहरी जड़ वाली हों, तो दोनों मिट्टी की अलग अलग सतहों से नमी और पोषक तत्वों का भरपूर अवशोषण तथा उपयोग करती हैं। इस प्रकार जल और पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता बढ़ने से उनकी उपज बढ़ जाती है। विभिन्न ऊंचाइयों तक बढ़ने वाली फसलों के मिश्रण में कम बढ़ने वाली फसल ऐसी होनी चाहिए जिसे प्रकाश की कम तीव्रता की आवश्यकता हो। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि कुछ मिश्रण अधिक सफल होता है जबकि कुछ अन्य फसलों का मिश्रण उतना लाभ नहीं दे पाता। नारियल, केला और अदरक फसल प्रणाली में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग होता है जिससे तीनों फसलों की अधिक उपज प्राप्त होती है। नारियल के बागान में केले और अदरक की फसल से आप अधिक लाभ कमा सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अदरक को सीधे सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती और नारियल के पेड़ इतने बड़े होते हैं कि उनके नीचे केले की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। मिश्रित खेती का ये एक अच्छा उदाहरण है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि कुछ फसलें ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो दूसरी फसलों के लिए लाभप्रद होता है। उदाहरण के लिए, यदि दलहनी फसल मूंग को धान्य फसल ज्वार के साथ उगाया जाता है तो मूंग की जड़ों की गांठों में एकत्रित हो रहे नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा ज्वार को मिल जाता है जिससे ज्वार की जो उपज होती है वो बढ़ जाती है। ऊंचे तथा मजबूत तने वाली फसलों के साथ बेल वाली फसलों को बोना उपज की दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस फसल मिश्रण में मजबूत तने वाली फसलें बेल वाली फसलों की बेलों को ऊपर चढ़ने में मदद कर उनके फलन को बढ़ा देती है। ऊंचे कद वाली फसलों की छाया ऐसी फसलों के लिए लाभप्रद हो जाती है जिन्हें कड़ी धूप की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अरहर और अनानास, अरहर हल्दी, अरहर अदरक आदि का मिश्रण। अनानास, हल्दी और अदरक ऐसी फसलें हैं जिन्हें सीधे धूप की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, कुछ फसलों की उपस्थिति उनकी सहयोगी फसल को कीड़ों के आक्रमण से भी बचाती हैं, जैसे मक्का की फसल में ज्वार, लाल मिर्च में सौंफ आदि। अंतर्वर्ती खेती मिश्रित खेती का ही एक रूप है। मिश्रित खेती एक ही खेत और एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार के बिना लगाने की पद्धति है। इसके विपरीत अंतर्वर्ती फसल प्रणाली में, जिसका उद्देश्य उपज और आय में वृद्धि करना है, एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार क्रम में लगाया जाता है। अंतर्वर्ती फसल प्रणाली और मिश्रित खेती दोनों ही इसलिए की जाती है ताकि किसानों को आर्थिक तौर पर लाभ हो और भूमि क्षेत्र, जल, पोषक तत्व, सूर्य की रोशनी आदि का समुचित उपयोग हो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका पूरा पूरा उपयोग हो और उससे आर्थिक तौर पर किसानों को एक सुरक्षा प्राप्त हो।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स, विषय था मिश्रित कृषि प्रणाली।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों के बाद यानी सुबह 6 बजे हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आर के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास पारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी रानी चंगा आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दिन में 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी जॉली बॉय आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रंगत कल यानी रविवार 30 तारीख को सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलयान की वापसी यात्रा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी जंगा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा तथा इस जलयान के श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही सुबह 8:45 पर। एमवी बम्बोका कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी जॉली बॉय कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही दिन में 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी बाराटान कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी सोमवार 31 अगस्त को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी सोमवार 31 तारीख को रात 8 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी 1 सितंबर को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर जलयान नालंदा कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:15 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, आज इंद्रधनुष कार्यक्रम का रंग है खेल। मैं हूं अनीता। तो चलिए खेल के इस जोशीले रंग से सजाते हैं आज का हमारा कार्यक्रम। श्रोताओं, खेल जो हमें जीतना ही नहीं, हार कर फिर से उठना भी सिखाता है। हमारे भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, खेल हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिनके माध्यम हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों ना हम सभी आज के दिन ये संकल्प लें कि चाहे

ही नहीं हार कर फिर से उठना भी सिखाता है। हमारे भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, खेल हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिनके माध्यम हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों ना हम सभी आज के दिन ये संकल्प लें कि चाहे शारीरिक हो या मानसिक रूप से खेले जाने वाले खेलों को हम अपने जीवन में आज से जरूर शामिल करेंगे।

सपनों को छंद से तोड़ जाता है। और जब बात हो प्यार के खेल की, तो इसमें भी भावनाओं की अपनी एक अलग पारी होती है। कभी जीत, कभी हार और कभी जिंदगी भर का साथ।

श्रोताओं, प्यार का खेल भी बड़ा निराला होता है। कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, कभी सपने दिखाता है तो कभी

श्रोताओं, हम सभी इस जीवन में एक खिलाड़ी का किरदार निभा रहे हैं। ये जीवन भी एक खेल ही है, यहाँ जीत भी है, यहाँ हार भी। लेकिन असली खिलाड़ी वो ही कहलाता है जो जिंदगी में आने वाले हर मुश्किलों से लड़कर जीत जाता है और आखिर में सिकंदर कहलाता है।

0: इसी खेल भावना और ऊर्जा के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। खेलिए, जीतिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।
1: इंद्रधनुष।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:23 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 345वीं कड़ी। गायक कलाकार शोभना राव और तथा संगीत संयोजक सतीश भाटिया।

रावण का वध हो चुका है। उसके कटे सिर और भुजाएं मंदोदरी के सामने धूल में लिपटी पृथ्वी पर पड़ी हैं। वो विलाप कर रही है, श्री हरि को तुमने मनुष्य मान लिया। जन्म से ही तुम परद्रोही और पापमय रहे, किंतु श्री रघुनाथ ने अपने हाथों तुम्हारा वध करके तुम्हें वो गति प्रदान की जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऋषि मुनि तथा देवता प्रभु का रूप निरख सुख और संतोष प्राप्त कर रहे हैं। स्त्रियों का विलाप सुनकर विभीषण विचलित हो जाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें धीरज बंधाते हैं। प्रभु का आदेश पाकर विभीषण अपने अग्रज की अंत्येष्टि करते हैं। क्रियाकर्म के विधिपूर्वक समाप्त हो जाने के बाद लंका नरेश के रूप में विभीषण का राज तिलक संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 345वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार शोभना राव तथा संगीत संयोजक सतीश भाटिया।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के समय 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तट पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जिसके चलते समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 1 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर

0: यानी 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर। विषय होगा आँखों की बीमारी, देखभाल और उपचार। विशेषज्ञ होंगे कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा दास। विषय से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं हमारे इन टेलीफोन नंबर पर कॉल करके। नंबर है 2325588। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुन पाएंगे 8:30 पर। सुबह 9 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप एस दंडापानी और एस गणेशन का जल तरंग वादन सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कशिश सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं। गीत गुंजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 11 बजे। 11:30 पर गीत अतीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर चर्चा होगी। 12:30 पर मलयालम में राष्ट्रीय खेल दिवस और नेत्रदान सप्ताह पर चर्चा होगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में जगजीत सिंह और लता मंगेशकर को आप सुनेंगे 1:10 पर। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय सभा जारी रहेगा जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ है, जिसमें सूचनाओं के अलावा लोकप्रिय गीतों का आनंद आप ले पाएंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में नेत्रदान सप्ताह, राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर वार्ता आप सुन पाएंगे। 5:30 पर बांग्ला में फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, साथ ही नेत्रदान सप्ताह और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर चर्चा भी की जाएगी। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6 बजे, जिसमें आप आडम पहाड़ के एक कृषक श्री सीताराम यादव से की गई बातचीत सुन पाएंगे। विषय होगा खेती किसानी लाभ का व्यवसाय। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गुजराती लोकगीत। 6:45 पर संजय श्रीवास्तव की लिखी झलकी सुनिएगा कंप्यूटर की सलाह। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएगी। दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युववाणी के तहत कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे। अभी आप हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। 10 टनमितं मानवीय साहाय्येन सह तृतीयं विमानयानं काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। आकस्मिक जलाप्लावनेन प्रभावितस्य नेपालदेशस्य कृते भारतं मानवीय साहाय्यं प्रवर्तितमस्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सामाजिकान्तर्जालीये पटले एतत् सूचितवान्। मंत्री अवदत् यत् साहाय्यार्थं पोर्टेबल जनरेटर सेट, डिग्निटी किट्स, भोज्यपदार्थाः, जलशुद्धिकरणाय औषधयश्च सन्ति।

0: तापमान रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय होगा 5:32। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 आज ही दिन में 11:40 पर श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूंगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दक्षिण अंडमान उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में कल आयोजित होने वाली नीट PG 2026 परीक्षा की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अंडमान एवं निकोबार कमान की ओर से मछुआरा समुदाय के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा कल सुबह 6 बजे संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया जाएगा।

पहले सुनिए मौसम का हाल। आज सुबह 5:30 बजे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 3.0 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 84% और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम

सुबह के समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। कल आयोजित होने वाली नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में दक्षिण अंडमान उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगादन के साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर तैनात सभी नोडल अधिकारी, केंद्र प्रभारी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल हुए। इनके अलावा परीक्षा के संचालन से जुड़े विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी परीक्षा केंद्रों, डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, एसआईएस कंप्यूटर एजुकेशन मिडिल पॉइंट और इंडिया टेक्नोलॉजी क्लॉक टावर में की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और आपसी विभागीय समन्वय, प्रभावी पर्यवेक्षण तथा उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के महत्व पर जोर दिया। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1800-4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन, मूल्यांकन पद्धति, शासन, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है संवाद कार्यक्रम और खेल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र का मुख्यालय श्री विजयपुरम ने हाल ही में अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के तत्वाधान में समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा को मजबूत करने और मत्स्य पालन समुदाय के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों व कप्तानों, मत्स्य पालन विभाग के प्रतिनिधियों और मछुआरा समुदाय के सदस्यों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य मछुआरों को समुद्री खोज एवं बचाव अभियानों के दौरान आने वाली चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना था, जिसमें डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर के अनजाने में सक्रिय होने के परिणाम भी शामिल है। इस पहल के तहत मछुआरा समुदाय के सदस्यों को सुरक्षा मार्गदर्शिकाएं भी वितरित की गई। स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित या मार्गदर्शिकाएं समुद्र में संचालन के दौरान पालन की जाने वाली आवश्यक सुरक्षा उपायों और सावधानियों के लिए एक त्वरित संदर्भ के रूप में कार्य करेगी। कार्यक्रम में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने में मछुआरा समुदाय के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। मछुआरों को समुद्र में रहते हुए

0: सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, ताकि वे सुरक्षा एजेंसियों की आंख और कान के रूप में कार्य कर सके और द्वीपों की तटीय सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सके। अंडमान निकोबार अभिलेखागार सचिवालय ने अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत इंटर्न के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अभिलेखागार प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। चयनित इंटर्न को अभिलेखीय कार्य के विभिन्न पहलुओं पर अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है। चयनित इंटर्न को इंटर्नशिप अवधि के दौरान 10,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतियों के साथ सहायक सचिव अभिलेखागार सचिवालय के पते पर 15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप और इंटर्नशिप कार्यक्रम के विस्तृत नियम एवं शर्तें अंडमान और निकोबार अभिलेखागार के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा कल सुबह 6 बजे संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया जाएगा। इस बीच समारोह के भाग के तहत वॉलीबॉल और हॉकी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। विभिन्न श्रेणियों के फाइनल खेले गए मुकाबलों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह आज शाम 5 बजे से टैगोर महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। वन विभाग को एक गुप्त सूचना मिलने पर टीम द्वारा तलाशी अभियान के दौरान रटलट के आमडेरा में लगभग 2.24 मीटर घन मीटर नाप की विभिन्न आकारों की 82 अवैध हाथ से चीरी गई पड़ौक लकड़ियां जब्त की गई। जब्त की गई अवैध हाथ से चीरी गई पड़ौक लकड़ियों को सुरक्षित अभिरक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए मंगलुटान रेंज के रेंज अधिकारी के माध्यम से संबंधित बीट अधिकारी को सौंप दिया गया। किसानों के बीच वैज्ञानिक मुर्गी पालन पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने प्रातरपुर ब्लॉक के तहत केंद्र शासित प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से सिबीघाट के एक निजी फॉर्म में चूजों की शुरुआती देखभाल पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को वनराजा प्रजाति के चूजे प्रदान किए गए। मार्गदर्शन के दौरान चूजों की देखभाल की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु अस्पताल ग्यारह चरमा द्वारा किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अंडमान उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में कल आयोजित होने वाली नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अंडमान एवं निकोबार कमान की ओर से मछुआरा समुदाय के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा कल सुबह 6 बजे संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागनी।

0: देश रागिनी।
1: देश रागिनी कार्यक्रम में मैं सीमा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी भाषा में लाखों शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है।

आखिर क्या है ये वतन? क्या यह सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ रेखाएं हैं या कुछ राज्यों और शहरों का समूह? जी नहीं, वतन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। वतन तो एक एहसास है, हमारी पहचान है और हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून है। वतन वो मिट्टी है जिसकी खुशबू में हमने सांस लेना सीखा, वो आसमान है जिसने हमें सपने देखने की आज़ादी दी। हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, लेकिन जब भी अपने देश का नाम सुनते हैं तो दिल की धड़कनें अचानक तेज़ हो जाती हैं।

वतन शब्द अपने अंदर त्याग, समर्पण और अनगिनत कुर्बानियों की दास्तां समेटे हुए है। वतन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की सीमा पर पहरा देते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो सके। लेकिन दोस्तों, देश सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बनता, देश बनता है हम सब से, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, आपसी भाईचारा निभाते हैं और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करते हैं, तब हम अपने वतन को और भी खूबसूरत बनाते हैं।

0: देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर।
2: हेलो डॉक्टर।

नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं सीमा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर के बेहद महत्वपूर्ण अंग आँखों के बारे में। आँखें हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने और समझने में मदद

0: करती है, इसलिए इनकी सही देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के इस बातचीत के माध्यम से अपनी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमने आज हमारे बीच में आमंत्रित किया है कंसल्टेंट ऑप्थेल्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा दास जी को। मैडम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय है आंखों की बीमारी, देखभाल और उपचार। विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमें पूछ सकते हैं हमारे इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके। नंबर है 232-558 और हमारा एसटीडी कोड है 0319203192। तो डॉक्टर, सबसे पहले क्वेश्चन हम यही पूछेंगे कि आंखों की सामान्य बीमारियां कौन-कौन सी होती है?
1: जी, आंखों की सामान्य बीमारियों में सबसे पहले नंबर में तो आता है रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब होता है या तो दूर की दृष्टि या नज़दीक की दृष्टि जिसमें बाधित हो जाती है, जिसको हम स्पेक्स यानी कि चश्मे से या फिर
0: चश्मे
1: कांटेक्ट लेंस से करेक्ट कर सकते हैं।
0: से।
1: उसके अलावा काफ़ी कॉमनली मोतियाबिंद यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद जिसको कैटरैक्ट कहते हैं,
0: जी
1: उसके अलावा होता है ग्लॉकोमा, काला मोतिया। साथ साथ एज के साथ साथ जो सेंट्रल विजन अफेक्ट होता है जिसे एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन कहते हैं, वो भी सामान्य रूप से देखा जाता है।
0: जी
1: प्लस ड्राइनेस जो काफ़ी कॉमन बीमारी हो चुकी है आजकल के लाइफस्टाइल में देखा जाता है। साथ साथ चाइल्डहुड रिलेटेड बीमारियां जैसे कि कम वेट वाले बच्चे जिसे रेटनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, आरओपी, ये भी देखते हैं। तो ये सारी काफ़ी कॉमन बीमारियां हैं। साथ साथ इन्फेक्टिव कंडीशंस जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई, आँख का लाल होना, एलर्जिक आई डिसीजेस, एलर्जी के वजह से आँखों का लाल होना, आँख में पानी आना, ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है।
0: तो जैसे अभी आपने आंखों में लाली की बात की, वो कैसे होता है और उसके वजह क्या है?
1: आँखों में लाली होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मुख्य रूप से इन्फेक्शन होता है, कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं जिसे। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एलर्जिक आई डिसीजेस, एलर्जी, आँखों की एलर्जी अलग से भी प्रेजेंट हो सकती है या फिर बॉडी में कोई एलर्जी चल रहा है उसके भी सेकेंडरी आँखों में एलर्जी हो सकता है। उसके अलावा आँखों में ब्लीडिंग होना, आँखों में ब्लड का जम जाना जो बहुत सारे रीजन से हो सकता है, यानी चोट लगने से या
0: जी
1: फिर कोई सिस्टमिक बीमारियां या जैसे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आँख लाल हो सकते हैं।
0: जैसे अभी आपने एलर्जी की बात की, तो कई बार आंखों में जो खुजली होती है और हम आंखों को मसलते हैं, तो वो कितना मतलब हमारे आंखों के लिए असुरक्षित है या तो घातक है, हम
1: जी,
0: कह सकते
1: आँखों को
0: हैं?
1: मसलना तो बहुत ही घातक है। आँखों को हाथ ही हमारा एडवाइस रहता है कि आँखों को आप हाथ ही ना लगाएं। आँखों में खुजली होने के बहुत सारे रीजंस हैं। मुख्य रूप से होता है ड्राइनेस।
0: जी
1: सिर्फ एलर्जी ही नहीं होता है आँखों में इचिंग होने का रीज़न, ड्राइनेस बहुत कॉमनली देखा जाता है। ड्राइनेस के कारण, ड्राइनेस का मतलब होता है कि आँखों में जो नॉर्मल आंसू बनते हैं वो या तो ठहरते नहीं हैं या फिर जल्दी इवॉपरेट हो जाते हैं या फिर बनते ही नहीं हैं।
0: मैम, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं, कहाँ और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: जी डॉक्टर साहब, जी अपना प्रश्न पूछें।
2: मेरी उम्र 53 बरस है।
0: जी
2: मैंने 23 में लेंस लगवाया और मैंने 26 में भी लेंस लगवाया
0: जी
2: जी। उसके सुरक्षा के लिए और आगे उपाय कुछ बताया जाए। ऐसे तो सब कुछ मेरा ठीक है, खान पान बताया जाए।
0: जी
1: जी आप बता रहे हैं कि आपने ऑलरेडी ऑपरेशन करवा चुका है, आपने लेंस लगवा लिया है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि ऑपरेशन अगर आँख में हो जाए तो वहीं पे आँखों की देखभाल ख़त्म हो जाती है। इवन ऑपरेशन के बाद भी हम एडवाइस करते हैं कि साल में एक बार आप अपने नेत्र विशेषज्ञ से जांच करवाएं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जैसे कि कुछ बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर हो जाए या फिर डायबिटीज़ हो जाए, तो इन सब का

0: रीजन से भी आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑपरेशन कराने के बावजूद भी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि खान पान के साथ साथ आप अपना रेगुलर जांच भी आपको करवाना जरूरी रहेगा।
1: इतना सुंदर सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान आप लोगों को निरोग रखे।
2: जी धन्यवाद धन्यवाद
0: थैंक यू सर।
2: जी। तो उम्मीद है इनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे ड्राइनेस के बारे में, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातें करते
0: जी
2: हैं।
0: तो मैंने आपको ये बताया था कि ड्राइनेस क्यों होता है। तो इसके अलावा ड्राइनेस का मुख्य कारण अभी ये भी देखा जाता है, एक्सेसिव स्क्रीन यूज़, मतलब कि कोई भी तरह का स्क्रीन, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए,
2: जी
0: जो आपके डेली लाइफ का एक पार्ट बन
2: पार्ट
0: चुका
2: बन
0: है।
2: चुका है।
0: तो इस कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे होता है कि बच्चों को हम जैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट बच्चों की पढ़ाई भी
2: अभी
0: जी
2: सिस्टम से ही होती है,
0: जी
2: मोबाइल
0: सिस्टम
2: से
0: से
2: होती
0: होती
2: है।
0: है, मोबाइल फोन से होती है। तो उसके कारण आँखों में बहुत सारी
2: तो
0: परेशानियाँ
2: उससे हम
0: होती
2: बच
0: हैं।
2: कैसे सकते हैं?
0: उससे बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो सबसे पहला है कि अननेसेसरी स्क्रीन्स नहीं
2: स्क्रीन्स
0: यूज़ करें। अभी जैसे कि हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप कंप्यूटर से नज़र बीच बीच में हटाएं, हर 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लें आप। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो 20 मिनट कंप्यूटर से नज़र हटा के मोबाइल फ़ोन देखते हैं। तो वो ब्रेक का मतलब होता है कि स्क्रीन से ब्रेक लेना।
2: जी
0: तो इसके लिए 20-20-20 रूल होता है, 20-20 रूल होता है, जिसमें हर 20 मिनट के काम के बाद आपको एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना होता है, जिसमें
2: बिल्कुल
0: आप 20 फीट की दूरी में देखें। अगर
2: जी
0: छोटा रूम है, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर जैसे स्कूल है, क्लासरूम है, तो उसमें मैं एडवाइस करूँगी कि 20 फीट तो नहीं, या तो आप आँख बंद करें या दूर देखें।
2: जी
0: तो इसमें क्या होता है कि आंखों के मसल्स और आंखों को रेस्ट मिलता है उतने दूर के लिए, प्लस जो टीयर्स जो इवोपरेट हो चुके हैं वो वापस से बनते हैं। तो
2: बिल्कुल
0: इसमें क्या होता है, ड्राइनेस होने से बचाव होता है।
2: जी।
0: ठीक
2: तो इसके लिए क्या हम पहले से ही मतलब एहतियात के तौर पे कोई चश्मा वगैरह यूज़ कर सकते हैं?
0: जी, चश्मे तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं इसको। ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं आजकल मार्केट में, बहुत सारे तरह के ग्लासेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं यही बताऊंगी कि सिर्फ चश्मे के यूज़ से आप नहीं बच सकते।
2: जी
0: आपको बचना है तो आपको स्क्रीन ऑफ करना है,
2: जी
0: आपको स्क्रीन से दूरी
2: चर्चा
0: करना
2: को
0: है।
2: जारी रखेंगे इस पर। एक कॉलर है हमारे बीच में। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी। जी अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते सर।
2: जी अपना प्रश्न पूछे सर।
1: डॉक्टर साहब, मुझे आपसे सवाल तो बहुत हैं, पर मेन मेन दो तीन बातें मेरे आपसे पूछनी है।
0: जी
1: अगर किसी पेशेंट को काला मोती आ जाए, ग्लोकोमा आ जाए, एक
0: जी
1: आंख में, एक आंख उसकी डैमेज हो जाए, पूरी
0: जी
1: 100% हो जाए, दूसरे
0: जी
1: में भी थोड़ा था, उसमें व्हाइट मोतिया भी था,
0: जी
1: तो उसमें लेंस लगा दिया गया, और अब पेशेंट की पोजिशन ऐसी है कि वो सिर्फ घर के ही काम कर पाता है।
0: जी
1: ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं कि दोबारा से इसको दो ये लेंस हटा के दोबारा लेंस लगाया जा सकता है, क्योंकि तो उसमें बताते हैं कि सफेदपन ज्यादा दोबारा से आ गया है।
0: जी
1: और
0: जी
1: दूसरा सवाल यह है कि क्या ये आर्टिफिशियल रेटिना अब हमारे हिंदुस्तान या हमारे विश्व में क्या बनना शुरू हो गया है, क्या आया है, क्या नहीं आया? क्योंकि रेटिना की
0: आर्टिफिशियल
1: भी काफी प्रॉब्लम है कि आर्टिफिशियल रेटिना लगाने के लिए
0: जी
1: नहीं मिल पाते।
0: जी
1: और तीसरा मेरा ये सवाल है कि अगर ये जो आजकल मोबाइल का समय है, बच्चे सब पास में ही होके मोबाइल देखते हैं, क्या इससे पास की नजर में फर्क आने के कुछ प्रॉब्लम आती आगे आने वाले समय में? इसके लिए क्या ये सब मोबाइल जो यूज करते हैं बच्चे, हम लोग बड़े लोग भी, ये कितना इसको हम सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बगैर आज दिन की दिनचर्या शुरू नहीं हो पाती। तीन सवाल हैं।
0: जी, आपने जो पहला सवाल पूछा था, मोतियाबिंद, आपने किसी पेशेंट के बारे में बताया था जिसे एक आंख पूरा डैमेज हो चुका है काला मोतिया यानी ग्लोकोमा से, और दूसरे आंख में सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हुआ था। देखिए, पहली बात, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट होता है और काला मोतिया ग्लोकोमा होता है, जो जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है और जो हमारे नसों को डैमेज करता है। देखिए, ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जो नस जो डैमेज हो जाता है उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट।

0: है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिससे हम आँख का प्रेशर नॉर्मल करके जो एग्जिस्टिंग नर्व है उसको हम बचा सकते हैं। उसके लिए आपको आपके डॉक्टर ने जो सलाह दी है, अगर आपको ड्रॉप्स दिया गया हुआ है तो वो आपको बराबर डालने होंगे और बराबर आँखों का प्रेशर जांच करवाना होगा, वो आपका वो आपके नेत्र विशेषज्ञ करेंगे। उसके अलावा जो सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन आप बता रहे थे, सफ़ेद मोतिया का एक बार जब ऑपरेशन हो जाता है तो दोबारा सफ़ेदीपन, दोबारा मोतियाबिंद तो नहीं बनता है, बट आफ्टर कैटरेक्ट बोलते हैं उसे, वो सिंपल लेज़र से ही क्लीन किया जा सकता है।
1: जी
0: लेकिन उसमें लेंस बदलने की ज़रूरत यूजुअली तो पड़ती नहीं है, लेंस जो डालते हैं हम वो लाइफ लॉन्ग वो ही लेंस काम आता है।
2: और
1: इसके
2: दूसरा
1: साथ मैं पूछूंगा, माफी चाहूंगा
0: जी,
1: कि अगर किसी को सफेद मोतिया में लेंस लग जाए
0: जी
1: और उसके बाद अगर दोबारा जरूरत पड़े कि उसको दोबारा लेंस की जरूरत पड़ती है, अगर वो लेंस हटा के दोबारा आगे फ्यूचर में उसको दोबारा से हाई पावर का लेंस लगाने की कुछ जरूरत पड़ती है, इसके बारे में जरूर बताइएगा।
0: जी नहीं सर, जो पावर हो, जो लेंस डलता है वो यूजुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है कि ये लेंस परमानेंट लेंस होते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सिवियर केसेस में जिसमें चोट लग गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तभी जाके ये लेंस हटा कर चेंज करते हैं, अदरवाइज 99% केसेस में तो लेंस चेंज नहीं किया जाता है।
2: जी तो इनका
1: मोबाइल के बारे में
2: जी बता रहे हैं जी,
0: जी
2: इनका दूसरा प्रश्न था आर्टिफिशियल रेटिना के बारे
0: जी,
2: में।
0: आर्टिफिशियल रेटिना अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में ही है। आर्टिफिशियल रेटिना अभी तक ह्यूमन बीइंग्स के लिए अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है सर। अभी तक दुनिया के किसी भी कोने में आर्टिफिशियल रेटिना अभी तक ह्यूमन बीइंग्स में नहीं इस्तेमाल किया गया है, वो अभी भी एक्सपेरिमेंट वाले स्टेज में है सर
2: जी। और इनका तीसरा प्रश्न था, जैसे मोबाइल फ़ोन हम जिसकी चर्चा कर ही रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि जैसे हम मोबाइल फोन्स काफ़ी करीब रख के देखते हैं तो उससे आँखों में कितना असर होता है?
0: डेफिनेटली बहुत असर होता है मोबाइल फ़ोन के एक्सेस यूज़ से। बच्चों में बहुत सारे स्टडीज़ अभी रिसेंटली किए गए हैं, स्पेशली कोविड के बाद, जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया था, तो इसके बाद बहुत सारे स्टडीज़ किए गए हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ से छोटे बच्चों में स्पेशली पावर आने के चांसेस बन गए हैं, चश्मे लगने के चांसेस हो गए, चश्मे लग सकते हैं, पावर हो आ जाता है। एक्सेस यूज से डेफिनेटली स्ट्रेन होता है, आँख में जलन होता है, ड्राइनेस होता है, जो हमारे टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स करते हैं, बट डेफिनेटली स्क्रीन के प्रॉपर यूज से, स्क्रीन हेल्थ फॉलो करने से ये सब ठीक हो सकता है।
2: जी तो उम्मीद करते हैं धर्मवीर जी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। तो हम जैसा चर्चा कर ही रहे थे स्क्रीन यूज़ के बारे में, ना सिर्फ बच्चे, आजकल तो सभी सभी वर्ग के लोग इससे वंचित नहीं है, सभी कोई ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो एज अ कॉमन आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? ना सिर्फ बच्चों को हम हमेशा फोकस करते हैं, लेकिन
0: हम बच्चों के लिए तो हम ही एग्जाम्पल्स हैं।
2: जी बिल्कुल,
0: बच्चों को अगर हम स्क्रीन से दूर करके हम ही अगर स्क्रीन में लग जाएंगे तो बच्चे तो हमारा ही फॉलो करेंगे। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अडल्ट मिडिल एज पीपल हो, सबको देखिए टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करना ही एडवाइज्ड है। टेक्नोलॉजी है, उसका सही इस्तेमाल करना। मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत हैंडी चीज़ है, लेकिन उसमें पढ़ाई लिखाई करना मैं एडवाइस नहीं करूँगी। पढ़ाई लिखाई के लिए तो बेस्ट तो बुक्स रहेंगी, किताबें रहेंगी। डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कॉल रिसीव करना, मैसेजेस करना उतने तक ही ओके है, बट आजकल जो एडिक्शन हो गया है, नया एडिक्शन हो चुका है, जो बच्चे भी रील्स
2: में काफी स्क्रॉल
0: करते रहते हैं, फेसबुक इंस्टा का जमाना है, स्क्रॉल करते रहते हैं इवन अडल्ट्स, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक रोक टोक लगाना है। जैसे अंधेरे में स्क्रीन्स का यूज़ आपको डिस्करेज करना है, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, आपको रात में अंधेरे में डेफिनेटली ये यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आई में ज़्यादा स्ट्रेन होता है।
2: जी तो श्रोता, हम आपको बता दें कि इस समय आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज का हमारा विषय है आँखों की बीमारी, देखभाल और उपचार। विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर सीमा दास। तो डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम को जारी रखते हुए

0: जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय में आई डोनेशन सप्ताह चल रहा है, तो उसके विषय में आप थोड़ा सा जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: जी, अभी 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल हम नेत्रदान शिविर,
0: हाँ
1: नेत्रदान सप्ताह, नेत्रदान फोर्टनाइट बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य रहता है कि जन जागरूकता करें नेत्रदान के बारे में,
0: जी
1: कि किस तरह से हमारी आँखें हमारे मृत्यु के पश्चात किसी और को दृष्टि देने के लिए काम आ सके।
0: जी
1: इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हैं।
0: तो कई बार आँखों का जो डोनेशन होता है उसमें उसको आप थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करें। कई बार जैसे एक मिथ, जहाँ तक मैं, जब हम छोटे थे, जब हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज थी, वो टाइम पे हम समझते थे कि आई डोनेशन मतलब पूरे आँखों को निकाल कर अलग करते हैं। तो
1: जी
0: कई बार ये एक रहता है कि आँख पूरा मर जाने के बाद में भी हमारा आँख अगर कोई और ले
1: जी
0: जाए तो एक रहता है एक
1: जी
0: भावनाएं।
1: जी बिल्कुल। मैं यही बताना चाहूँगी कि देखिए, नेत्रदान एक ऐसा है, टिश्यू डोनेशन है, जो जिसमें जो मृत्यु के पश्चात ही हो सकता है।
0: जी
1: अगर हम नेत्रदान करना चाहे तो हमें अपने परिवार वालों से ये अपनी इच्छा बतानी है, क्योंकि ये हमारे मृत्यु के बाद ही होगा।
0: बाधी हो गया।
1: तो इसमें क्या होगा कि आप अपने नियरेस्ट आई बैंक सेंटर से आप रजिस्टर करा लीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं भी कराया तो तब भी ये हो सकता है। तो आपके मृत्यु के पश्चात आपके परिवार वाले या आपके सगे संबंधी जो है, ये आई बैंक, कोई भी नियरेस्ट आई बैंक में कॉल कर सकते हैं और नेत्रदान के बारे में बता सकते हैं। तो टीम ऑफ डॉक्टर्स रहेंगे जो आएंगे और आपके आई रिट्रीव करेंगे। अभी एक बार जब ये आई हम रिट्रीव करते हैं तो उसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता। आप जैसे कह रहे हैं कि आंखों को निकाल देंगे तो हमारा बॉडी कैसे दिखेगा, नहीं। जैसे हम आई रिट्रीव करने के बाद उसे एक प्रोस्थेटिक से उसे कवर कर देते हैं, और तो आंख बंद रहने के बाद ये दिखाई नहीं देता कि कोई डिसफिगरमेंट हुआ है या नहीं। वो जस्ट एक नॉर्मल लुकिंग फेस रहता है।
0: जी तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पूरी आँखों को ही निकालते हैं, मतलब कई बार अभी जो न्यू जनरेशन है वो तो इन्फॉर्मेशन ले
1: जी
0: लेते हैं
1: अभी
0: जो
1: जी अभी तक इतना अभी तक ऐसा हुआ है कि सिर्फ कॉर्निया, मतलब कि आँख का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आँखों
0: जी
1: के सामने, बस कॉर्निया ही यूज़ होता है उसमें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए रजिस्टर हुए, और अगर हमारे बाद हमारी आँखें किसी के लिए काम
0: काम
1: आ
0: आती है
1: सके
0: तो
1: तो
0: ये बहुत बड़ी,
1: बहुत
0: बहुत
1: बड़ी बात।
0: बड़ी बात होती है। जी हम चले जाएंगे लेकिन हमारी आंखें दुनिया में जिंदा रहेगी, है ना। तो मैं, अगर हम कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आंखों की बात आती है तो लोग ज़्यादातर उसे बच्चों से कनेक्ट करते हैं और मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आँखों में और क्या जो बीमारियाँ हो सकती है?
1: जी, इसके अलावा जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे होते हैं, पावर वाला प्रॉब्लम तो होता है, बट उसके अलावा जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, इन सब से भी आँखों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अगर ये अनकंट्रोल्ड रहे, शुगर प्रेशर जो है आपका, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब कंट्रोल में नहीं रहता है, तो इससे आँखों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली आँखों के नसों में प्रॉब्लम्स होते हैं।
0: बिल्कुल
1: आँखों के जैसे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकते हैं, प्लस डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आँख में काफ़ी ब्लीडिंग होता है, ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, उससे दृष्टि में काफ़ी असर हो जाता है।
0: जी जैसे कि मैम, अभी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, तो कई बार जैसे आँखों में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया या फिर जैसे खुजली हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम क्या है, सुनी सुनाई बातों पे या देखी, गूगल किया कुछ भी, और जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो कितना तक सही होता है?
1: ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप अगर गूगल करने जाए, आप अगर ढूंढने जाए इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से, आप सिर्फ आँख का लाल होना ढूंढेंगे तो वो एक कंजंक्टिवाइटिस से लेके कैंसर तक की बीमारियाँ
0: बीमारी
1: बता
0: बता
1: देंगी,
0: देगा।
1: तो ये अननेसेसरी दिमाग में जोर डालेगा। तो
0: जी
1: मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इस तरह से अपने परेशानियों को कभी भी
0: और
1: इंटरनेट
0: ना
1: से
0: बढ़ाए।

0: हाँ बढ़ाए ना, और सेल्फ ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो ना करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन्स बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं आपको कभी एडवाइस नहीं
1: नहीं
0: करूँगी कि
1: करेंगे
0: बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवाइयाँ यूज़ करें।
1: जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर्स होते ही हमारे लिए कंसल्ट करने के लिए, और कंसल्ट करने के बाद में फिर आप जो भी मेडिसिन्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है वो आप ले सकते हैं। तो जैसा कि कई बार घरेलू नुस्खे भी करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी बहुत बार ऐसे देखा है कि छोटे बच्चों में मैंने देखा है, या फिर इवन अडल्ट्स जो हैं लैक्टेटिंग मदर्स के मिल्क यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये घरेलू उपचार कहते हैं बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ में गुलाब जल डालना या फिर बहुत सारे आई मास्क होते हैं
1: और
0: तो
1: कई बार ना जैसे लोग पानी को पूरा आंख में ऐसे
0: छींटे
1: छींटे
0: मारते
1: मारते
0: रहते हैं,
1: हैं।
0: तो डेफिनेटली आंखों में पानी बार बार मारना भी बहुत प्रॉब्लम्स करता है। तो अननेसरी ये सारी चीज़ें, एक तो आंखों की खुद के मैकेनिज़म्स होते हैं, आंखों
1: जी
0: में अपना आंसू बनता है, आंखों में खुद बहुत सारे बॉडी के मैकेनिज़म्स होते हैं फाइट करने के लिए डस्ट को या फिर ऑर्गेनिज़म्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वो आंख अपने आप से उसे साफ़ कर देता है। लेकिन अभी आपने जैसे मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि डेफिनेटली आंख में छींटे आप तभी मारे, पानी तभी मारे अगर आंख में गलती से कुछ स्प्लैश हो गया हो, जैसे कि
1: जी
0: कुछ केमिकल स्प्लैश हो गया हो या फिर आंख में कुछ धूल चला
1: धूल
0: गया
1: चला
0: हो,
1: गया
0: तो
1: हो।
0: उसमें आप डेफिनेटली आंख धो सकते हैं। बट अननेसरी आप बार बार आंख को धोना हम एडवाइस नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ड्राइनेस सेट हो जाता है आंख में और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी एक समय था लोग चश्मा लगाने से कतराते थे, अब ऐसे हो गया कि लोग लगाते हैं चश्मा, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि मजाक मस्ती में जैसे हम किसी और का चश्मा भी यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं कैसे है, तो वो कितना सही होता है।
0: देखिए हर हर एक का आंख अलग होता है, हर एक के आंख के पावर्स अलग होते हैं, एक एक ही व्यक्ति के दोनों आंख के पावर्स भी अलग
1: अलग होते
0: होते हैं,
1: सकते हैं।
0: तो हो सकते भी हैं। तो इसमें दूसरे व्यक्ति का चश्मा कभी भी आपको नहीं लगाना चाहिए, इसमें आंखों में काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, जिससे आंख में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
1: जी
0: तो दूसरे व्यक्ति का चश्मा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें।
1: जी तो काफ़ी बातें हमने बीमारियों के बारे में कर दी। अब थोड़ा सा आप झटपट से हमें बता दें खान पान के बारे में।
0: जी खान पान में तो एक बैलेंस डाइट आपको फॉलो करना है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, फल, ये सब तो आपको लेना ही है। साथ में आँखों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन ए जो खूब सारी मात्रा में, जैसे गाजर हो गया, आम, पपीता, इन सब चीज़ों में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रहता है विटामिन ए। उसके अलावा आंवला, गूसबेरीज बोलते हैं, तो
1: जी
0: आंवले में काफ़ी विटामिन सी रहता है जो आँखों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ में जैसे हम इन आइलैंड्स में रहते हैं जहाँ पे मछली काफ़ी काफ़ी वैरायटीज़ में
1: वैराइटीज
0: मिलती
1: में
0: हैं,
1: मिलते हैं।
0: तो इसमें होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये सारे बहुत ही उपयोगी होते हैं हमारे आई हेल्थ के लिए।
1: जी बिल्कुल। बैलेंस डाइट हमारे सेहत के लिए और हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर में हैं, तो कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने फल खाने पीने की हमने बात कर ली, लेकिन आप एक हेल्दी आँखों को रखने के लिए हमें कैसे क्या स्टेप्स ले
0: जी जैसे हमने बैलेंस डाइट का तो बता ही दिया है, उसके अलावा जैसे स्क्रीन हेल्थ, उसका भी ध्यान रखे, कंप्यूटर मोबाइल से दूर रहे, साथ में धूप में चश्मों का इस्तेमाल
1: इस्तेमाल करें।
0: करें, क्योंकि जो सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं वो भी हमारे नसों को काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं, तो उससे एडिक्वेट प्रोटेक्शन लें।
1: जी
0: साथ में जैसे ही आपके आँख में कोई तकलीफ होता है तो आँखों को रगड़े नहीं, बार बार बार भी पानी से ना धोए। आपको अगर कोई दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तब भी आपको नियमित रूप से अपने आँखों की जांच करवानी

0: जी। और जैसे आँखों को ठीक रखने के लिए हम
1: आपको रेगुलर आई चेकअप्स करानी बहुत ज़रूरी है।
0: जी, तो डॉक्टर आप कार्यक्रम में आई और बहुत सारी जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। आपने समय निकाल कर हमारे बीच में आए और बहुत सारी जानकारियाँ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, आप अभी हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम सुन रहे थे। हेलो डॉक्टर, विषय था आंखों की बीमारी, देखभाल और उपचार। कार्यक्रम में आज हमारी विशेषज्ञ थी कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा दास। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मैं यानी सीमा। तकनीकी सहयोग दिया बी नाटकेश्वर और हिमांजलि ओझा ने, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी रेवा किश्वरी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन

0: खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंट्रल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुए हैं 2015 से।
1: भारत ने अमेरिका के साथ जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जैवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय

0: कार्यालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308719। आप व्हाट्सएप नंबर 996829188 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIR News Hindi और पब्लिक पर @AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 1,00,000 टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45,00,000 टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी

0: चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित, नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदे का भारत, अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थाने गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश, मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन के उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579 while 1924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के उस पार आपको सुनवाएंगे तलत अजीज के गाए चंद नज्म।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज़ हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेंजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी, एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में, और अब श्रोताओं लीजिए सुनिए तलत अजीज की आवाज में ये नज्म।

तलत अजीज के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 9 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है हम जोली। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल थे व लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। और अब लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत निर्देशन में ही तैयार आनंद बख्शी का लिखा गाना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम मन चली।

0: HIV एंड AIDS प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।
1: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में, और अब लीजिए सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में तैयार साहिर का लिखा गाना एक

0: जिन लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका एचआईवी स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका एचआईवी टेस्ट कराना या एचआईवी स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की एचआईवी टेस्ट के समय प्री और पोस्ट एचआईवी काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।
1: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में, और अब लीजिए सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में तैयार साहिर का लिखा गाना एक महल हो सपनों का, फिल्म से सुर लता मंगेशकर की।

और अब श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं लोफर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं व लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब श्रोताओं कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए काला बाजार फिल्म का ये गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल हैं व एस डी बर्मन का संगीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप एस दंडापाने और एस गणेशन का कर्नाटक शैली में जल तरंग वादन सुनेंगे। इनके साथ वॉयलन पर ए एस गणेशन, एम ए सुंदरेशन, मृदंगम पर टी वाई कृष्णन और वाई कृष्णन तथा घटम पर रमेश ने संगति की है। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए ए एस दंडापानी और ए एस गणेशन का जल तरंग पर बजाया राग वाक्षपति, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति पी शिवन की।

0: श्रोता हूँ, अभी आप एस दंडापानी और एस गणेशन का जल तरंग पर बजाया राग वाक्षपति सुन रहे थे। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast,

0: blog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब लीजिए सुनिए एस दंडापानी और एस गणेशन का जल तरंग पर बजाया राग कंबोजी, जो आदि ताल में है, कृति त्यागराजा की।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में एस दंडापानी और एस गणेशन का कर्नाटक शैली में जल तरंग वादन सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल धड़कने दो से। आवाजें हैं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की। जावेद अख्तर का लिखा गीत जिसे सुरों में ढाला है शंकर एहसान लॉय ने।

प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की आवाज़ों में ये था दिल धड़कने दो फिल्म का शीर्षक गीत। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए आई लव एंड वाई फिल्म का गीत तुलसी कुमार के स्वर में। मयूरपुरी का लिखा गीत जिसकी धुन तैयार की प्रीतम ने।

सोनू निगम और तुलसी कुमार के स्वरों में श्रोताओं अभी आपने आई लव एन वाई फिल्म का ये गीत सुना, मयूरपुरी का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। बजरंगी भाईजान, इस फिल्म से लीजिए सुनिए मिका सिंह का गाया ये नगमा, शब्बीर अहमद के लिखे शब्दों को सुरों में ढाला प्रीतम ने।

सोना महापात्रा और अभिषेक नेलवाल के आवाज़ों में ये था बैंगिस्तान फिल्म का गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं मिथुन और तुलसी कुमार की आवाज़ों में ऑल इज़ वेल फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा व संगीतकार आनंद मिलन।

अजय अतुल की तर्ज पर बनी ये है इरशाद कामिल के लिखे शब्द, जिसे गाया है अभय जोधपुरकर और साथियों ने। फिल्म का नाम है जीरो।

कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रतन धनपायो फिल्म का गीत अन्वेषा और विनीत सिंह के स्वरों में, इरशाद कामिल का लिखा गीत जिसकी धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

वेलकम बैक फिल्म के इस गीत के बाद श्रोताओं अब लीजिए सुनिए सलमान खान और अमाल मलिक की आवाज़ों में हीरो फिल्म का ये शीर्षक गीत। गीत लिखा कुमार ने तथा इस गीत की धुन तैयार की सचिन जिगर ने।

असरार और अख्तर चैनल की आवाज़ों में श्रोताओं लीजिए सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे शब्द, जिसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है फैंटम।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कैलेंडर गर्ल्स फिल्म का गीत अरमान मलिक के स्वर में, कुमार का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने।

वाजिद के संगीत निर्देशन में तैयार यह है कुमार का लिखा गीत, जिसे गाया है बैनी दयाल और शलमली गोलखोड़े ने। फिल्म का नाम है मैं तेरा हीरो। श्रोताओ, ये है हमारे कार्यक्रम की अंतिम भेंट।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में ये था कोली नंबर फिल्म का गीत, जो कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का पहला गीत था। इस गीत को लिखा समीर ने तथा संगीतबद्ध किया आनंद मिलन ने। और अब कार्यक्रम में कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं सैनिक फिल्म का गीत, समीर का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में श्रोताओं, ये था फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का नगमा। जमीर कैज़मी का लिखा गीत जिसकी तर्ज बनाई अनु मलिक ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का

0: for herself, can be a social media influencer and हमारी art, culture, हमारी संस्कृति को देश भर में international level पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा platform है and मैं आपके माध्यम से Gen Z जो है हमारे उनको भी request करूँगी, उनको urge करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माय वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा. सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें. इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स और 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस.
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग.
2: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है. फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन में अब हम शामिल कर रहे हैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाजों में. देव कोहली का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया अनु मल्लिक ने.

0: पाई था ये था।
1: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में श्रोताओं अभी आपने जानम समझा करो फिल्म का ये गीत सुना और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत अतीत।

गीत अतीत कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे आपने सुना फिल्म अलबेला से। आवाजें थी लता मंगेशकर और चितलकार की। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया था सी रामा चंद्रा ने। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और माफ़ कीजिएगा मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। शैलेंद्र का लिखा गीत जिसे शुरू में ढाला शंकर एहसान शंकर जयकिशन ने।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड

0: बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं। और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में गीत अतीत को जारी रखते हुए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं तकदीर का तमाशा फिल्म का ये गीत आनंद और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर व संगीतकार आनंद मिलन।
3: Thank you.

आनंद साधना सरगम और साथियों की मिली जुली आवाज़ों में श्रोताओं अभी आपने तकदीर का तमाशा फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में माया फिल्म का नगमा। सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में तैयार गीत के बोल मजरूह ने लिखे हैं।

कार्यक्रम का आखिरी गीत श्रोताओ आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुना, फिल्म थी माया। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत अब

0: श्रोताओ, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओ, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजक्शकियान ने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमरीका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजक्शकियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय

0: inspired generations. Hockey India has announced a cash reward of 50 lakh rupees for the Indian women's hockey team for their historic fifth place finish at the FIH Hockey Women's World Cup 2026 in Belgium and the Netherlands. India defeated world number 5, Germany 3-1 in Amstelveen on Thursday. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम के तहत फनकार हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह। तो कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये नगमा, रचना मजरू सुल्तानपुरी की है।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और कार्यक्रम में अभिनंदन। कार्यक्रम का हम आगाज करें उससे पहले हमारे श्रोताओं को हम बता दें हमसे जुड़ने का तरीका। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा दें 9474234000। आपको अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जाकर टाइप करना है फिल्म का नाम, गाने के बोल और अपना नाम और पता, और हम शामिल करेंगे आपका मनपसंद गीत हमारे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत है असली नकली फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इसे सुनने के इच्छुकमंद श्रोता हैं रमेश चंद्र, जय नारायण, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। इन्होंने ये मैसेज हमें भेजा है सदर बाज़ार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से।

हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीका मगड़ मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। कहा है, आदरणीय प्रसारक जी को सप्रेम नमस्कार। कोई सा भी गीत आपकी पसंद का हम सुनना चाहते हैं, तो आप सभी को हम सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये शीर्षक गीत।

सिर्फ तुम फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुनने के बाद श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म ललकार का ये नगमा, जिसे सुनने के इच्छुक मंद श्रोता है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सताना मध्य प्रदेश से उमंग, आकांक्षा और माही मल्लिक।

ज़िला पश्चिम सिंहभूम जयबासा झारखंड से हमें संदेश आया है। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली का ये सुनना चाहते हैं तड़ीपार फिल्म का ये नगमा, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो

0: कंटेंट क्रिएशन इन इट सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो. सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें. थैंक यू.
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया.

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम, और कार्यक्रम का अंतिम संदेश हमें भेजा है छोलदारी श्री विजयपुरम से राजू, सोनम, आरुष राव, जयेश राव, दिव्या और सूरज ने। ये सुनना चाहते हैं मधोशी फिल्म का शीर्षक गीत, जिसे गाया है रूप कुमार राठौर ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार दोपहर 2 बजे मिड न्यूज़, व दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: and the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र

0: में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88718, 011-230-88719 और 011-230-88719।

0: निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-718 और 011-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@nea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
4: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार

0: साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
3: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
2: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, साथ ही तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने व एक या दो स्थानों पर 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में हवा की गति 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिससे समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 1 सितंबर तक समुद्र में न जाए। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय दोपहर के 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, अब आपके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: चक टू, शी इज न्यू, कहते हैं मेम बड़ी तीखी इसकी गेम, शी इज कूल पर दिल की है फूल, बड़ी बड़ी टीमों का भुलाए हाल चाल, है ये इंग्लिश माल आजा, प्रीति सबरवाल।
1: व्हाट? यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी?
0: चक थ्री, शी स्टिंग्स लाइक अ बी, गांव की ये छोरी खेले हॉकी चोरी चोरी, बाप भाई कोई रोके तो करे सीना जोरी, ड्रिबल में से तेज नहीं कोई साली हो या साला, आ गई भैया छा गई भैया कोमल चौटाला,
2: खेलने वाला खेल रहेगा, रोकने वाला फेल रहेगा, जो ज्यादा मरोड़े मूछ चाट ले जाके भैंस की।

0: Chuck four on the floor. घिसी हुई है पिया हुआ है घाट घाट का पानी, सबसे सीनियर प्लेयर है ना, करती है मनमानी, हिम्मत और हिमाकत है, टीम की है खलनायक, अपने दिन में गेम बदल दे, आजा बिंदिया नायक।
1: अरे देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से, लाइन पे इनको लाना है साम दाम दंभेद से।
0: चक फाइव जिमी अडाइव कैप्टन है और गोली भी, पर घर का गोल खाली है, एक तरफ है बॉल और स्टिक, दूसरी तरफ खुशहाली है।
2: शादी मुश्किल गेम है, पर प्लेयर हार कब माने हैं। विद्या शर्मा इंडिया कैप्टन, इसके भी

इट्स अ फिक्स, कुंभकर्ण है टीम की, खैर है जब तक सोई रे, आए जब ये जोश में टिकने ना पाए कोई रे, ओ आई रे ओ छाई रे, शी स्कोर बलबीर कौर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: नॉन स्टॉप म्यूज़िक इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, अभी आप चक दे इंडिया आशिक बनाया आपने, मैरी कॉम, गुलाम, सुल्तान, खट्टा मीठा, भाग मिल्का भाग, सरफरोश, गोल्ड, शिवाय, दंगल और जो जीता वही सिकंदर फिल्मों के इन गीतों का आप आनंद ले रहे थे।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।
1: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। समय हुआ है 3:30 और अब लीजिए सुनिए प्रोग्राम सैनिकों के लिए। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं और खासकर हमारे सैनिक भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देशभक्ति कोई एक दिन का उत्सव नहीं, ये पूरी जिंदगी निभाए जाने वाली जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाते हैं हमारे सैनिक भाई। ना दिन की खबर ना रात का पता, हमारी सुरक्षा के लिए मुश्तैदी से तैनात है ये सिपाही। हमारे सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम में ये पहला गीत जिसे हमने लिया है वीर जारा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरुदास मान और प्रीति मजुमदार की। गीत लिखा जावेद अख्तर ने तथा गीत को संगीतबद्ध किया है

वीर ज़ारा फिल्म के इस गीत के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं सलामे इश्क फिल्म का ये नगमा। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम और शंकर महादेवन की मिली जुली आवाज़ों में गीत लिखा समीर ने। इस गीत की धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

हमारा खास कार्यक्रम सैनिकों के लिए, इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं A.R. रहमान के स्वर में स्वदेश फिल्म का ये नगमा। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है A.R. रहमान ने।

0: रेडियमवेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। सभा के आरंभ में पेश है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन एनजी रोकरहामंग एंगिरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम एनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog

0: kuchik enlang yin talon cheta he hang mene inram kalon din ke ka ing isan ichar ngat parisin ku ngamre ta khi nakunen lekten nga sinanga tel nga ang hek in horej ai hang rongi ta ka sa ta ida fan kan ro tala harap nga yen
1: श्रोताओं, ये था निकोबारी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्या इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्तवाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्तवाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को यह समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा

और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिरदर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या हैं जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खानपान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना।

कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय है शाम के 4:40। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर वार्ताएं आप सुनेंगे। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर और मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर वार्ताएं प्रसारित की जाएगी। संध्या 6 बजे किसानवाणी के तहत आटम पहाड़ से श्री सीताराम यादव से बातचीत होगी। विषय रहेगा खेती किसानी लाभ का व्यवसाय। धरती के गीत कार्यक्रम में गुजराती लोकगीत का आनंद आप ले सकते हैं संध्या 6:30 पर। 6:45 पर संजय श्रीवास्तव की लिखी जलखी आप सुनेंगे कंप्यूटर की सलाह। मौसम की जानकारी व जलयानों की यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युववाणी के तहत कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है, जिसमें आप राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा सुनेंगे। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार और गौरवगान आप सुनेंगे 8:30 पर। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में डॉक्टर मंदपाक सारदा का गायन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे 100.9 MHz विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र के आज के शेष कार्यक्रम।

अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा सूकर पालन में नवजात बच्चे का प्रबंधन। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा आंख शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर आप सुनेंगे वतन के गीत। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का समय रहेगा 7:15 जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम होगा 7:30 पर। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगजीत सिंह और शारदा। बाल जगत कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे शिक्षकों को सम्मान थैंक यू टीचर पर परिसंवाद और जन्माष्टमी के त्यौहार पर चर्चा आप सुनेंगे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन प्रसारित की जाएगी। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सुबह 10 बजे। कल दिन के 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसका संस्कृत अनुवाद आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम के तहत पुराने गीत और विश्व नेत्रदान पखवाड़ा पर चर्चा होगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:10 पर फनकार होंगे अशोक खोसला। 1:30 पर घर संसार कार्यक्रम के तहत शिक्षा दिवस पर वार्ता राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और जन्माष्टमी पर चर्चा आप सुनेंगे। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर अपनी पहली सभा संपन्न होगी जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। 3 बजे कार्यक्रम होगा एल्बम टाइम। 3:30 पर आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ जिसमें सूचनाओं के अलावा सेंट ग्रिगोर्सी द ग्रेट से भक्ति गीत आप सुनेंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा 4:45। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत और भगवत चरण वर्मा पर चर्चा। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर पुराने फिल्मी गीतों के अलावा आप सुनेंगे भगवत चरण वर्मा पर चर्चा। संध्या 6 बजे महिलाओं के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संगीत संगिनी। धरती के गीत कार्यक्रम में ओडिया लोक गीत आप सुनेंगे 6:30 पर। देश गान का प्रसारण होगा 6:45 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20 पर। युववाणी के तहत 7:30 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर अनुगूंज और रात 10 बजे रविवासरी अखिल भारतीय सभा में जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म के इस गीत के साथ। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन और गायक कलाकार है किशोर कुमार, लता मंगेशकर व साथी।

0: खून पसीना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, शाम के 5 बजे हैं, ये समय है तमिल कार्यक्रम का।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणकम तमिल अमुदम वणकम नेयर्गले।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: বন্ধুরা, এর সঙ্গে শেষ করব আমাদের আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। প্রচারিত হল আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে। শান্ত বাংলা অনুষ্ঠান থেকে আমি অনন্যা আজকের মতো এখানে বিদায় নেব। ভালো থাকবেন সকলে, শুভরাত্রি।
2: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान साथियों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, कार्यक्रम का शुभारंभ हम खूबसूरत विचार से करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, परंतु भगवान उनकी जीवन रूपी नाव को कभी डूबने नहीं देती। कहने का मतलब यही है साथियों कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए, हम अवश्य एक न एक दिन सफलता हासिल करेंगे। साथियों, इसी विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं पर हम हर दिन आपसे चर्चा करते हैं। आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, आइए लेते हैं इस विषय पर जानकारी।
4: सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भारत सरकार द्वारा 2015 में देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। इस सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसमें किसानों के जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी

0: दी जाएगी और किसान अपनी जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अच्छी फसल की खेती कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक 3 साल में किसानों को प्रदान किया जाएगा। कार्ड किसानों को उनकी खेतों की गुणवत्ता के अनुरूप प्रदान किया जाएगा, जो कि 3 साल के लिए एक बार होगा। इस स्कीम के अनुसार सरकार का 3 साल के अंदर ही पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसानों को यह कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। इस मृदा हेल्थ कार्ड में खेतों के लिए पोषण उर्वरकों के बारे में बताया जाएगा। सॉयल हेल्थ कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें मिट्टी के गुण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के किसानों को उनकी जमीन की अध्ययन करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके। किसानों को उनके खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2022 के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता अनुसार फसल लगाने से फसल की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके। अब चलिए आपको बता दें कि सॉयल हेल्थ कार्ड में कौन कौन सी जानकारी दर्ज होगी। सॉइल हेल्थ कार्ड में जानकारी उपलब्ध होगी मिट्टी की सेहत, खेत की उत्पादन क्षमता, पोषक तत्व की मौजूदगी एवं पोषक तत्व की कमी, मिट्टी में नमी की मात्रा, अन्य उपस्थित पोषक तत्व, खेतों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उचित दिशा निर्देश। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लाभार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में अभी आपने ये जानकारी हासिल की। किसान साथियों, अब आइए हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, पशुओं में कंधों का घाव किस कारक से होता है, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, पशुओं में कंधों का घाव किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। प्रश्न के उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान साथियों, हमारे अधिकतर किसान भाई पशुपालन के साथ खेतीबाड़ी भी करते हैं। खेतों में कई एक सब्जियां होती है जिसे हमारे किसान साथी लगाकर उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए ऐसे ही एक किसान डॉलीगंज शिव कॉलोनी के रहने वाले श्री सीताराम यादव जी, इनसे मुलाकात करते हैं और इनके साथ की गई ये बातचीत सुनते हैं।
1: सीताराम जी, आपका स्वागत है।
2: हाँ, नमस्ते मैडम, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार।
1: जी सीताराम जी, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
2: मैं जो है वो खेती किसानी करता हूँ, जिसमें मैं हमने जो है बैंगन की खेती, उसके साथ साथ टमाटर की खेती
1: जी,
2: और जो है हरे मिर्च की खेती करते हैं
1: जी,
2: और छोटे स्तर पर जो है हमने अभी शुरुआत किया है
1: जी,
2: और इससे जो है हम जो खेती करते हैं वो टोटली ऑर्गेनिक करते हैं।
1: ऑर्गेनिक खेती करते हैं,
2: ऑर्गेनिक करते हैं, जिसमें कि हम गौ माता का जो गोबर का खाद होता है
1: जी,
2: उस खाद का उपयोग करते हैं
1: जी,
2: जिससे कि बहुत ही अच्छा और पौष्टिक जो है सब्जी हमें प्राप्त होती है
1: जी जी जी,
2: और हम अपने यूज के साथ साथ जो है हमारे आसपास के लोग हैं बहुत ज़्यादा होने से हम अपने मार्केट में भी लोगों को देते हैं
1: जी,
2: तो ये जो है बहुत अच्छे से इसका उत्पाद मिलता है। लोग ऐसे सोचते हैं कि जो जो पेस्टिसाइड वगैरह जो है जो दवाओं से उगाया जाता है उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है, ये भ्रांति है। हमने जो है देखा है कि ऑर्गेनिक से भी
1: ऑर्गेनिक से ज़्यादा फायदा होता है,
2: ऑर्गेनिक से भी बहुत ज़्यादा जो है उत्पाद मिलता है
1: जी,
2: और बहुत ही अच्छे ढंग से सब्जी होता है।
1: अच्छा, तो खेती में अच्छी पैदावार के लिए आप किन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं?
2: देखिए, खेती में जो है जो हमारी मिट्टी है उसका जो है बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो उसका जो है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मिट्टी अगर समृद्ध रहेगी तो उसमें जो है फसल बहुत अच्छा होगा
1: जी।
2: ठीक है, जैसे कि अगर कोई पशु ही है, अगर वह स्वस्थ है तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा
1: जी।
2: ठीक उसी तरह

0: आपके सब्जी की खेती में जो है मिट्टी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए
1: जी।
0: उसके साथ साथ उसके जो न्यूट्रिशन जैसे कि गाय के गोबर का खाद हो गया
1: जी,
0: और भी जो भी जरूरी चीजें हैं वो अगर समय से दिया जाए तो पौधे भी अगर बहुत हरियाली हरे भरे रहेंगे
1: जी,
0: और जो पैदावार भी जो है वो हमारे उम्मीद से ज्यादा मिलेगा,
1: ज्यादा मिलेगी। अच्छा, तो क्या आप आधुनिक कृषि तकनीकों या कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं?
0: हाँ, जरूर करते हैं, क्योंकि अभी के समय में बिना आधुनिक उपकरणों के तो कृषि करना मतलब
1: मुश्किल
0: संभव नहीं है
1: जी, जी।
0: वो इसलिए संभव नहीं है कि जो मतलब सहयोगी दल है जैसे कि काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो जो कास्टिंग है जो उनका एक दिन का जो जो हाजिरी देना पड़ता है, जो पैसा देना पड़ता है उनका, वो काफ़ी महंगा है
1: जी।
0: तो इस हिसाब से जो आधुनिक उपकरण है उससे काफ़ी आसान हो गया है कृषि करना।
1: अच्छा, और ये सिंचाई की व्यवस्था आप कैसे करते हैं?
0: अब सिंचाई की जो व्यवस्था है, देखिए अभी यहाँ पे तो खुद से जो है वो व्यवस्थित करना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: जैसे सिंचाई के लिए पानी जो हम अपने पीने के लिए यूज करते हैं सिंटेक्स में रखते हैं, वहाँ से जो है मोटर के जरिए अपने खेतों में सिंचाई करते हैं समय समय पे।
1: अच्छा,
0: दो से तीन दिन चार दिन जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से करते हैं।
1: तो इस समय आपके खेत में कौन सी फसल लगी हुई है?
0: अभी हमारे खेत में जो है बैंगन लगा हुआ है,
1: बैंगन,
0: टमाटर है।
1: अच्छा,
0: और हरा मिर्च है, ये तीन चीजें हैं।
1: ये तीन चीजें। अच्छा, तो ये खेती करते समय आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए यहाँ पे मौसम जो है
1: जी,
0: मौसम
1: तो हमारे यहाँ का, हाँ,
0: मौसम जो है काफी ज्यादा बारिश होता है यहाँ पे
1: जी।
0: तो बारिश के वजह से जो है जितना दिन हमारे खेत में उत्पादन मिलना चाहिए उतना होता नहीं है,
1: नहीं होता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है मौसम का आपके खेत में?
0: अभी जैसे बारिश कभी बहुत ज्यादा हो गया
1: जी,
0: ऐसे जैसे कि धूप होता है तो उसके लिए तो सिंचाई करके उसकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश में जो है अगर पौधे बाहर है तो उनके फूल जो है सब गिर जाते हैं
1: जी।
0: तो जहाँ एक पौधे से अगर 20 किलो मिलना है
1: जी,
0: वहाँ 5 किलो 10 किलो मिलता है, तो नुकसान हो जाता है,
1: नुकसान होता है। अच्छा, तो क्या आपको सरकार की किसी कृषि योजना का लाभ मिला है? अभी तो कई सारी योजनाएं आई हैं, तो
0: आई है तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन क्या है कि उसका प्रचार प्रसार सभी किसानों तक नहीं पहुंचा,
1: नहीं पहुंच पाया
0: इसका,
1: अच्छा।
0: इसका अगर प्रचार प्रसार हो तो सभी किसान जागरूक होंगे और अच्छी तरह से खेती बाड़ी के तरफ उनका ध्यान आकर्षित होगा
1: जी जी जी। तो आपको साल में कितनी फसल मिलती है और फसल का चुनाव आप किस आधार पर करते हैं?
0: देखिए फसल का जो चुनाव है वो मौसम के आधार पर करने से जो है बहुत अच्छा रहता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि कुछ कुछ फसलें हैं जो ठंडी के मौसम में ज़्यादा ग्रो करती है, ज़्यादा पैदावार देती
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: तो मौसम के हिसाब से अगर हम फसलों का चुनाव करें तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा।
1: अच्छा, और ये खेती की शुरुआत आपने कब से की है, कितने सालों से आप कर रहे हैं?
0: खेती का शुरुआत अभी मैं 38 साल का हूँ, करीबन मैं 15 साल से जो है
1: 15
0: साल से हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, उनके साथ साथ मैं भी जुड़ा हुआ।
1: और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: प्रेरणा मुझे जो है, देखिए ये हमारा पारंपरिक काम है
1: जी,
0: हमारे पूर्वजों का दिया हुआ काम है, बेसिक काम जिसको बोलते हैं
1: जी,
0: तो वो हमारा काम है, तो हमारे पूर्वजों से ही ये इसकी
1: अच्छा
0: शिक्षा मिली है।
1: आपके पूर्वज करते थे तो उनसे आप, और ये फसल जब तैयार होती है आपकी खेती की तो आप उसे कहीं बेचते हो?
0: हाँ, जरूर बेचते हैं, हमारे आसपास असली में ऐसा है कि ऑर्गेनिक खेती बहुत कम ही लोग करते हैं,
1: कम लोग करते हैं जी।
0: तो हमारा जब उत्पादन सब्जियों का होता
1: जी
0: है तो हमारे आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं
1: जी,
0: उनके वही लोग जो है हमारे यहाँ से परचेस कर लेते हैं और कम पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्तर पे तो होता नहीं है
1: जी, नहीं होता,
0: तो आसपास में ही हो जाता है, और अगर बचता है तो हमारे यहाँ पे मार्केट है, बतूबस्ती मार्केट है, वहाँ पे जो है हम लोग जाके
1: देते
0: हैं, काफी अच्छे रेट में जाता है।
1: तो अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप क्या कहना चाहोगे?
0: तो सुझाव यही है कि कृषि करने योग्य जो भूमि है
1: जी,
0: उसको बचाने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम उठाए
1: जी,
0: जिससे कि कृषि करने योग्य भूमि जो है पर्याप्त मात्रा में रहे
1: सके जी,
0: क्योंकि भूमि पे ही अन्न उगेगा
1: जी,
0: अन्न उगेगा तो ही इंसान का भोजन मिल पाएगा, जानवरों का भोजन मिल पाएगा, तो भूमि को जो है कृषि योग्य रखना मतलब एकदम अनिवार्य होना चाहिए
1: जी, हाँ, जी,
0: जैसे कि पहले एक व्यवस्था बनी हुई थी कि जहाँ पे अगर 2-4 हेक्टेयर अगर जमीन है तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर में लोग बसेंगे रहेंगे, बाकी 3 हेक्टेयर जो है वो कृषि कार्यों के लिए उस जमीन को रखा जाएगा
1: जी,
0: जो कि वो अभी के समय में ठीक उसका विपरीत हो रहा है।
1: अच्छा,
0: अभी पहले का एक परिवार में अगर 25 लोग रहते थे
1: जी,
0: तो वहाँ पे जो है

0: 200 स्क्वायर जिसको 2000 वर्ग फुट बोलते हैं उतने जगह पर्याप्त था रहने के लिए, लेकिन अभी क्या हो गया कि हर चार लोगों पे 2000 वर्ग फुट जगह चाहिए, तो कहाँ से आएगी जमीन? तो जमीन तो उतनी ही है, जनसंख्या खाली बढ़ रही है और उनकी जरूरतें बढ़ रही है, हर चार लोगों पे 200 स्क्वायर जगह चाहिए। तो इस चीज को जो है कुछ मतलब प्रशासन की तरफ से एक प्रतिबंध लगाया जाए कि जो कृषि करने योग्य जगह है वो कृषि करने के लिए रखी जाए, इसको व्यवसाय न बनाया जाए।
1: अच्छा जी, तो आज के युवाओं के लिए खेती के क्षेत्र में आपका क्या संदेश है?
0: मैं ये युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा, मतलब आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो किसानी और पशुपालन से जुड़े, इससे जो है वो बेरोजगारी की जो समस्या है, जो सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर से अच्छा और कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से।
1: तो आपका क्या राय है कि सफल किसान बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है?
0: सफल किसान बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मन से मेहनत करिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत जो परिश्रम है वो एक ऐसा मास्टर की है जी।

अभी आपने डॉलीगंज शिव कॉलोनी के रहने वाले श्री सीताराम यादव के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे, जो कि खेती किसानी का काम भी करते हैं और उससे लाभ कमा रहे हैं। उम्मीद करते हैं किसान साथियों को इनकी बातचीत अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, अब ये कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: किसान साथियों, अब आइए हम आपको जानकारी दे देते हैं मधुमक्खी पालन और शहद मिशन पर।
1: किसान साथियों, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020 में शुरू की गई मिशन है। इस मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई थी। मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB कृषि एवं किसान कल्याण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC किसानों या मधुमक्खी पालकों को प्रदान करता है मधुमक्खी कॉलोनियों की निगरानी के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण। सभी मौसमों में मधुमक्खी कॉलोनियों के प्रबंधन के साथ साथ मधुमक्खी के शत्रुओं और रोगों की पहचान और प्रबंधन, मधुमक्खी पालन उपकरण से परिचित कराना, शहद निष्कर्षण एवं मोम शोधन। चलिए अब आपको बता दें कि हनी मिशन के उद्देश्य क्या हैं। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाना। अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पादन माना जाता है। अन्य मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे रॉयल जेली, मोम, पराग आदि का भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल, भोजन, पेय, सौंदर्य और अन्य में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित करेगा, बीमारियों को रोकेगा और मधुमक्खी कॉलोनियों के नुकसान को रोकेगा तथा मधुमक्खी पालन उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा प्रदान करेगा। खेती के तरीके से घरेलू और राष्ट्रीय बाजार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला शहद व अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक बड़े कारक के रूप में उभर रहा है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से किसानों की आय दुगुनी होगी, रोजगार पैदा होगा, खाद्य सुरक्षा और मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित होगा तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी।
0: मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। साथियों, अभी आपने इस विषय पर ये जानकारी हासिल की।

0: उत्पादकता में वृद्धि होगी।
1: मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। साथियों, अभी आपने इस विषय पर ये जानकारी हासिल की।

किसान साथियों, कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था कि पशुओं में कंधों का घाव किस कारक से होता है। साथियों, पशुओं में कंधों का घाव जीवाणु से होता है। उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम धरती के गीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुजराती लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब सुनिए संजय श्रीवास्तव की लिखी जल की कंप्यूटर की सलाह। इसके निर्देशक हैं अनिल कुमार राम। तो लीजिए सुनिए जल की कंप्यूटर की सलाह।
1: अजी सुनते हो? मैंने कहा जी।
2: अजी मैंने कहा अशोक।
3: क्या है?
2: जब तक नाम लेकर न पुकारो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें?
3: कुछ भी तो नहीं।
2: ना मैं एकदम नहीं मान सकती। जाने क्या हो गया है तुम्हें कि हर बात पर चौंकते रहते हो। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है।
3: क्या मतलब?
2: मतलब ये कि एक तो हर वक्त जाने किन ख्यालों में खोए रहते हो, दूसरे बस बात करते करते घूरने लगते हो। क्या बात है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं?
3: शीला ये तुम क्या कह रही हो? चक्कर और मैं?
2: और नहीं तो क्या, जब देखो तब फिल्मी हीरो की तरह अटक मटक कर बात करते हो। देखो जी तुम्हारे दिल में जो हो साफ साफ कह दो, मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन ये उल्लुओं की तरह सूरत बनाकर मत बैठा करो।
3: शीला तुम नहीं समझोगी। अरे आजकल मैं कुछ सोच रहा हूँ।
2: वही तो मैं पूछ रही हूँ।
3: मैं ज्यादा से ज्यादा शहरत कमाना चाहता हूँ।
2: घर के खर्च के लिए पूरे पैसे तो कमा नहीं पाते और चले हैं शहरत कमाने।
3: शीला मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे लोगों पर मेरी धाक जम जाए, बच्चे बच्चे की जुबान पर मेरा नाम हो।
2: तो फिर ऐसा करो तुम किसी बच्चों के स्कूल में नाम लिखवा लो, काफी नाम हो जाएगा। हर बच्चा यही कहेगा कि मेरे स्कूल में तो अशोक नाम का बुड्ढा पढ़ता है।
3: शीला तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो।
2: सुनो ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो, समझे? दुनिया 21वीं सदी में जा रही है और आप जनाब 16वीं सदी में पड़े हैं।
3: तुम समझती हो तुम्हारे इतना बोलने के बाद मैं तकलिया कहूंगा? हरगिज नहीं। पहले ये बताओ आज का अखबार कहाँ है?
2: घर में इतने काम है मैं तो उसी में तंग रहती हूँ। ये कहाँ है, वो कहाँ है, तुम्हें कहाँ तक बताती रहूंगी। ऐसा करो तुम एक कंप्यूटर लाकर रख लो, वो तुम्हें सब बता देगा, समझे? मैं तो चली।
3: कंप्यूटर? अरे वाह, ये हुई ना काम की बात। आजकल तो वास्तव में हर बात कंप्यूटर ही बताता है। क्यों ना चलकर उसी से कुछ सलाह लूं। सिटी कंप्यूटर सेंटर, बीते हुए काल के बारे में जानकारी, 1,000 रुपया। भविष्य के बारे में जानकारी 1,500 रुपया। मुकदमा संबंधी बातचीत

0: 1500 रुपए, नौकरी संबंधी जानकारी 2000 रुपए, परीक्षा पास कैसे करें 2000 रुपए। अरे ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है। खैर आज माता, लेकिन 2000 रुपए आएंगे कहां से?
1: आइए जनाब आइए, क्या सोच रहे हैं? कंप्यूटर पर अपना भाग्य आजमाइए। आइए आइए, ये सोचने का वक्त नहीं है, लगता है पैसे नहीं है।
0: लेकिन आपको कैसे मालूम?
1: जनाब यहाँ पर सब कुछ मालूम है। कोई बात नहीं, आपके पास जो कुछ हो वही दे दीजिए, बाकी बाद में दे दीजिएगा, लेकिन एक बार अपना भाग्य जरूर आजमाइए। देखिए मौका बार बार नहीं आता, एक ही बार आता है। हो सकता है आज आपके भाग्य का कोई सितारा चमचमा रहा हो और पल भर में आप लखपति हो जाएं। हाँ उस कंप्यूटर पे, हाँ वही उस पर, आपके दिल में जो बात आए आप बटन पर लिखे शब्दों द्वारा कंप्यूटर में भर दीजिए, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अगर आप समझ गए हो तो शुरू हो जाइए।
0: मैं नाम कमाना चाहता हूँ।
2: आप कहानीकार बन जाइए।
0: लेकिन मुझे तो कहानी लिखनी आती नहीं।

0: हाँ तो जनाब आपका वक्त खत्म और पैसे जरूर दे जाइएगा।
1: अच्छा अच्छा धन्यवाद। मैंने कहा शीला शीला, अरे भाई जरा अखबार तो देना।
2: आ गए आप, लीजिए पढ़िए और खो जाइए ख्यालों में।
1: लाइए। मंत्री जी विदेश यात्रा से लौटे, बस दुर्घटना में दो चार घायल, युवक दल क्रमिक हड़ताल पर, 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु कहानी प्रतियोगिता, चमत्कार लगता है, कंप्यूटर की बात सच होने वाली है। पूर्ण विवरण हेतु लिखे शीला, अरे भाई शीला, लो चमक गया अपना सितारा, अब तो मैं टॉप का कहानीकार बन जाऊंगा। ओए बल्ले बल्ले, बस पुरस्कार पा जाऊं, हाय फिर तो एक बंगला बने प्यारा, उसमें हो एक कंप्यूटर न्यारा, कंप्यूटर।
2: अशोक अशोक, ये क्या हो गया है तुम्हें?
1: कुछ नहीं, तुम देखती जाओ, मैं तो चला।
2: अरे सुनो तो,
1: चले रास्ता।
2: अरे सुनो तो, देखो मुझे सच सच बता दो, ये क्या चक्कर है तुम्हारा?
1: शीला सोचो, अगर मैं बैठे बैठे ही लखपति बन जाऊं तो कैसा रहे?
2: अभी तो तुम मेरे पति बने रहो, फिर बनना लाखों के पति।
1: शीला तुम समझती नहीं, मैं धनवान बनने की बात कह रहा हूँ। हमारे एक बंगला होगा, एक कार होगी, नौकर होंगे और दो चार बच्चे होंगे।
2: हाय राम, मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि तुमको क्या हो गया है, हर वक्त ख्याली पुलाव।
1: शीला तुम मेरे जज्बातों से मत खेलो।
2: घर के काम से तो फुर्सत मिलती ही नहीं और तुम खेलने की बात करते हो।
1: ओफो शीला, तुमने तो ना समझी की हद कर दी। तुम देखती जाओ, जैसे किसी की अचानक लॉटरी खुल जाए और वो फिर धनवान बन जाता है, उसी तरह आज मैं रातों रात साहित्य की दुनिया में हंगामा पैदा करने वाला हूँ।
2: ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, कभी ऑफिस में हंगामा करते हो तो कभी महल

0: कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हो।
1: शीरा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जानती हो मैं आज एक कहानी लिखने जा रहा हूं, और देखो मुझे डिस्टर्ब मत करना वरना समझो हाथ में आए पैसे निकल जाएंगे और फिर सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा, समझी? अब तो मैं साहित्यकार बन जाऊंगा, अखबार में मेरा नाम आएगा, फोटोग्राफ पे फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ। देखो एक बार फिर कह देता हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझी?
0: समझ गई, लेकिन ये नहीं समझी कि तुम्हें हुआ क्या है।
1: सब समझ जाओगी, बस तुम देखती जाओ।
0: आइए पिताजी।
2: अरे क्या बात है बेटी, तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? क्या बात है बता सही, कहीं अशोक ने तुझे कुछ कहा तो नहीं?
0: बस कुछ भी नहीं, कैसे आना हुआ?
2: अरे ऐसे ही, ये है अपने मित्र भाई, बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, इन्हीं का एक मुकदमा था, उसी सिलसिले में आया था, लेकिन तू कुछ छिपा रही है, बता तो सही बेटी क्या बात है?
0: पिताजी अशोक को जाने क्या हो गया है, हफ्ते भर से बस यूं ही चुपचाप बैठे हैं, कभी घूरने लगेंगे, कहते हैं मैं टॉप का कहानीकार बनूंगा, पागल से हो गए हैं।
2: अच्छा
3: ससुर जी चरण स्पर्शम।
2: खुश रहो खुश रहो,
3: अब तो और भी मजा आएगा जब मिल बैठेंगे दीवाने दो।
2: तो ये बात है।
3: अरे आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, क्या मैं पागल हूँ या अजनबी?
4: वो तो अभी मालूम पड़ जाएगा कि तू कौन है।
3: आपकी तारीफ
4: बताने की जरूरत नहीं है, तुम जरा इधर आना तो।
3: शीला शीला ये क्या हो रहा है, ये कौन है? इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है, अजीब भूतों जैसा चेहरा है।
4: डरो नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, आओ आओ मेरे पास बैठो। हाँ यहाँ, अब अपना हाथ दो। अब बताओ तुम कौन हो?
3: मैं अशोक हूँ मेरे पाप।
4: तू झूठ बोलता है, तुम जरा इसे जोर से पकड़ लो।
2: अभी लो।
3: अरे छोड़ दो मुझे, ये सब क्या है, मैं तो पागल हो जाऊंगा।
4: तू ये सब क्या कर रहा है?
3: मैं तो कहानी लिखने की तैयारी कर रहा हूँ।
4: कहानी? अब समझ में आया, तेरे ऊपर कहानीकार का भूत है, तो तू भी सुन ले, अपना नाम खड़छू बाबा। हाँ तू यहाँ से भाग जा, भाग जा। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, इसको कहानीकार के भूत ने पकड़ रखा है, ये तो इसको पागल कर देगा।
0: महाराज महाराज जी बचा लीजिए इनको, वरना वरना मेरा परिवार तो बर्बाद हो जाएगा।
4: अरे जरूर बचाऊंगा बेटी, तू भी तो मेरी अपनी बेटी है। अच्छा ऐसे करो, थोड़ा पूजन देना पड़ेगा। सुन यार, तू जरा ये सामान ले आना।
2: कौन सा?
4: अब चंदन का बुरादा आधा किलो।
2: ठीक है।
4: हाँ, और लोबान कपूर एक किलो, और सुन अच्छी कंपनी का धोती कुर्ता, और हाँ 2 किलो लाल पीसी मिर्च।
0: पिताजी पिताजी ये लीजिए पैसे,
4: जल्दी
0: पास की दुकान पर सब मिल जाएगा।
3: शीला शीला ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं लुट गया, अरे मैं लुट गया, अरे ससुर जी रुक जाइए, अरे कोई मेरे दर्द को समझो।
4: अरे बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ तेरे दर्द को, बस तू भाग जा तो सारा दर्द दूर। हाँ तू खड़नसू बाबा से टक्कर लेगा?
3: नहीं।
4: अरे मैं तेरी खटिया खड़ी करके रख दूंगा। ओम भूर भू वस्तु तक सभी तुम्हारे भगो रे वसु ओम स्वाहा ओम स्वाहा।

0: महाराज ये लीजिए सारा सामान।
1: लाइए बेटी, जरा तू आग तो ले आ।
2: ये लीजिए।
1: हाँ, अब आप लोग इन्हें पकड़ी जोर से।
3: छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, अरे मुझे छोड़ दो। हाय, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाय मेरी, अरे मिर्चों की धुरी, अरे मेरी आंखें जल रही है। अरे
2: अरे अरे अरे अरे ये तो बेहोश हो गए।
0: बेहोश हो गए
1: बेटे, अब जरा पानी लो। भाग गया, बहुत कठोर था।
3: मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? अरे तुम लोग भागो, भागो, मर गए, मर गए। इतनी मुसीबत, अरे तौबा तौबा, पा जाए ऐसी कहानी लिखने से। मुझे नगीन नाम कमाना, अरे बाढ़ में जाए कंप्यूटर की सलाह, और मैं तो चला।
4: अभी आप संजय श्रीवास्तव की लिखी झलकी कंप्यूटर की सलाह का आनंद ले रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज शाम 7:30 पर युववाणी के तहत कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है। इसमें राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा आप सुनेंगे।

रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में डॉक्टर मंदपाकसारदा का गायन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कल दिन के 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इसका संस्कृत अनुवाद आप सुनेंगे 11:30 पर।

कल सुबह 9 बजे बाल जगत कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को सम्मान, थैंक यू टीचर पर परिसंवाद और जन्माष्टमी के त्यौहार पर चर्चा आप सुन सकेंगे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

0: इस अंतराल के बाद।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: Indian Air Force invites eligible boys and girls from all islands of Andaman and Nicobar to join as Agniveer Vayu in OS stream. Open recruitment rally planned at Netaji Stadium, Rajiv Gandhi Nagar, Sri Vijayapuram from 31st August to 7th September 2026. For details, visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी कॉलेज में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और अंडमान निकोबार पुलिस कर्मियों के लिए विशेष PSO एवं सामरिक ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कल समापन हो गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 33 अत्यधिक प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की गई। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह समेत संबंधित राज्यों में मलेरिया नियंत्रण की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। श्रीमती पटनायक ने प्रभावित जिलों में जिला एवं ग्राम कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शुरुआती जांच, समय पर उपचार और मजबूत निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में जांच किट और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मच्छर नियंत्रण के लिए ग्रामीण एवं शहरी विकास विभागों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अंडमान निकोबार भोजपुरी समाज का 6ठा स्थापना दिवस कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में मनाया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होगा।

अवसर पर हिंदी साहित्य कला परिषद के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस दौरान भोजपुरी कला और संस्कृति के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्योत्तर अंडमान जिले के किसानों के लिए 1 से 3 सितंबर तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केंद्र श्री विजयपुरम में आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 48 किसान हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में प्राकृतिक खेती की तकनीकों के साथ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैव इनपुट तैयार करने एवं उनके उपयोग तथा फसल प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है राष्ट्रीय खेल दिवस और प्रशिक्षण कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में कयाकिंग और कैनोइंग में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलम माधुरी मिंज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने छात्रों से खेल को समर्पण, अनुशासन, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ RVR मूर्ति ने छात्रों के बीच टीम वर्क, चरित्र और स्वस्थ जीवन शैली को विकसित करने में जोर दिया। उन्होंने छात्रों से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेलकूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इस मौके पर छात्रों को चक दे इंडिया फिल्म दिखाई गई और एक रोमांचक वॉलीबॉल मैच भी खेला गया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता के तहत हाल ही में महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ RVR मूर्ति ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रतियोगिता दूर दराज के क्षेत्रों के बीच दूरी को कम करने और सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। मुख्य अतिथि नीरजा गुप्ता ने जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर के युवा और उभरती हुई प्रतिभाओं को खोजना, उन्हें तराशना और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया। श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार पुलिस और CPF मुख्यालय NSG मानेसर के सहयोग से आयोजित पुलिस कर्मियों के लिए विशेष PSO एवं सामरिक ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कल समापन हो गया। प्रशिक्षण में कुल 72 PSO और 30 चालकों ने भाग लिया। इस दौरान जवानों को VIP सुरक्षा, करीबी सुरक्षा, वाहन नियंत्रण, पार्किंग सिद्धांत, सुरक्षित एवं सामरिक ड्राइविंग सहित विभिन्न परिचालन पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम NSG के विशेषज्ञ दल द्वारा संचालित किया गया। टीम ने व्याख्यान, प्रदर्शन और व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार के पुलिस महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव ने NSG और सभी हितधारकों के प्रति सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से पुलिसकर्मियों की पेशेवर दक्षता, परिचालन तत्परता और VIP सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी। पूरे कार्यक्रम का समन्वय IRBN कमांडेंट श्वेता के सुगथन द्वारा किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले PGT शिक्षक प्रकाश राव जे ने विशेष आवश्यकता वाले और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने बिल्डिंग एज लर्निंग एड पहल के तहत कम लागत की स्थानीय सामग्रियों से साधारण स्कूलों को आधुनिक शिक्षण केंद्रों में बदला है, जिसे क्षेत्र के 22 सरकारी स्कूलों में लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य

के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मायाबंदर सहित कई विद्यालयों में मॉडल साइंस सेंटर, आधुनिक लैब और एक डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की है। उनके इस सराहनीय योगदान पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने उन्हें समाज और शिक्षक वर्ग के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बताया है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विषयों में अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। फरारगंज निर्वाचन क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य अब्दुल बशीर ने आज छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी के साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालय माइल तिलक और उसके आसपास सफाई अभियान चलाकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी कॉलेज में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और अंडमान निकोबार पुलिसकर्मियों के लिए विशेष PSO एवं सामरिक ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कल समापन हो गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत,
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी,
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक,
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर,
6: यन पॉलिसी यन कयल।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444 पर कॉल

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: Indian Air Force invites eligible boys and girls from all Northeast states and Sikkim to join us Agnivir Vayu in OS stream. Open recruitment rally planned at Nagaland Armed Police Training Center, Chumo Kedima, Nagaland from 31st August to 7th September 2026. For details visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए मौसम व जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। लिटिल अंडमान में 2 मिलीमीटर, कार निकोबार वायुसेना क्षेत्र और मायाबंदर में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं और मछुआरों को बताया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। मछुआरों को आज से 2 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की सी वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे।

ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी नालंदा कल सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी रंगत कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और उसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोट्टा शाही द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शाही द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसकी वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बूका शहीद द्वीप के लिए कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटंग कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसकी वापसी अगले दिन यानी सोमवार 31 तारीख को स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये थे जलयानों की यात्रा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मेरा पहला पहला प्यार फिल्म का इस गीत के साथ, जिसे केके ने गाया है। गीतकार व संगीतकार है विपिन मिश्र।

शंकर महादेवन, के सुखविंदर सिंह, महालक्ष्मी अय्यर के मिली जुली आवाजों में ये गीत है झूम बराबर झूम फिल्म से। इसे लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

झूम बराबर झूम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, जीवन में सफलता का पहला कदम आत्मविश्वास है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकारमय राहों में भी प्रकाश फैलाता है। इसलिए कभी भी स्वयं को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आपकी शक्ति आपके अंदर ही छिपी होती है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, भारत में हर वर्ष आज के दिन यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाना है। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करते हैं। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को महत्व दें तथा स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाएं।

0: दोस्तों, आज माह का पांचवा शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है।

0: ऐसा भी होता है।
1: दोस्तों, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी पूरी सीमा आज तक ज्ञात नहीं हो पाई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी ऐसी ही अरबों तारों से भरी हुई है। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि हम इस असीम ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है।

दोस्तों, पृथ्वी के महासागर आज भी पूरी तरह से खोजे नहीं जा सके हैं। माना जाता है कि समुद्र का लगभग 80 हिस्सा अभी भी अनजाना है। गहराई में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बिना सूर्य के प्रकाश के भी जीवित रहते हैं। इन जीवों की बनावट और जीवन शैली इतनी अलग होती है कि वे किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं।

दोस्तों, मानव शरीर अपने आप में एक चमत्कार है। इसमें मौजूद दिल हर दिन लगभग 1,00,000 बार धड़कता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि यह 1 सेकंड में हजारों सूचनाओं को प्रोसेस कर सकता है। यही कारण है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है।

दोस्तों, हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें याद नहीं रख पाते। नींद के दौरान हमारा दिमाग बहुत सक्रिय रहता है और दिन भर की घटनाओं को व्यवस्थित करता है। यही कारण है कि अच्छी नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है।

दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यहाँ लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। यह जंगल पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को।

कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए उलझन फिल्म का गीत लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। बोल मदन पालकी और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल स्वरों में सुनिए समीर की रचना। धुन तैयार किया है आनंद मिलिंद ने और फिल्म का नाम है उड़ान।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देव कोहली के शब्दों को सुरों में पिरोया है अनु मलिक ने अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है हमेशा।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में इस गीत को रचा है समीर ने कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में। फिल्म का नाम है बलमा।

बालमा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार और गौरव गान।

पहले रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मेट्रिक लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 7841 04 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक-एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा

पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम यानी प्रॉपर चैनल से अवसर सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं।

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल MSEFC द्वारा MSEODR स्कीम के तहत योग्य अभ्यर्थियों से लीगल कंसल्टेंट तथा HR ऑफिस या सेक्रेटेरियल के दो पदों पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोनों पदों पर नियुक्ति मार्च 2027 तक होगी और ये पद डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज श्री विजयपुरम में होंगे। लीगल कंसल्टेंट पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ लॉ ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के पास विभिन्न न्यायालयों, सरकारी संस्थाओं, जुडिशियल बॉडीज सहित ट्रिब्यूनल्स में लीगल वर्क का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा MSME डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशन अथवा मीडिएशन मैटर्स से संबंधित कम से कम 1 वर्ष का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। अभ्यर्थी में अच्छी ड्राफ्टिंग स्किल्स, इंग्लिश तथा लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी और MS ऑफिस का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। पद की संख्या 1 है और एंगेजमेंट 31 मार्च 2027 तक रहेगी। HR ऑफिस सेक्रेटेरिएट पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। अभ्यर्थी के पास डेटा एंट्री में 2 वर्ष का अनुभव तथा कंप्यूटर स्किल्स, इंटरनेट या वेब सर्फेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग और एक्सेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा इंटरप्रिटेशन का अनुभव होना चाहिए। पद की संख्या 1 है और एंगेजमेंट 31 मार्च 2027 तक रहेगी। दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया में प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी और शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग तथा एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए रिटन टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है। चेयरमैन अंडमान एंड निकोबार MSEFC और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यालय के निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप में उपस्थित होना होगा। दोनों पदों पर एंगेजमेंट मार्च 2027 तक होगी और इसे रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। विभाग को निर्धारित शर्तों एवं जिम्मेदारियों के उल्लंघन की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का अधिकार रहेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है।

और अधिक जानकारी के लिए 21 अगस्त का द डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुआ। अब सुनिए गौरव गान।

अभी आप रोजगार समाचार और गौरवगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद

0: श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा

0: क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
3: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
4: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी

0: प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a 2-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size and long-term investment potential at Chicago Business Roundtable. Over 115 lakh hectares brought under per drop, more crop micro-irrigation scheme till July this year. 37 people killed following a Russian attack on Bucha district of Ukraine. And red alert issued for very heavy rainfall in Odisha till Monday. Heavy rainfall also likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand and parts of northeastern states. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. The two leaders are scheduled to hold detailed discussions on the entire gamut of bilateral relations and review progress in key areas of cooperation. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his 4th visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669,

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण, सशक्त युवा, विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य।

0: एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से, और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में ना फिल्म है ना अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन, और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है और अब हमारे जनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डेलुली आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डेलुलू वर्ड यूज करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैराशोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट। और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और

0: पॉडकास्टर जेनजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है और इसीलिए आज के दौर में ये जेनजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेनजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं, मतलब प्रेशर तो है। पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेनजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेनजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है। लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है, वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, यह कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेनजी तक पहुंचना है तो जेनजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेनजी पहले से मौजूद है और लिंगो वही चलेगा जो जेनजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहाँ गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेनजी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है, वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
1: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं। दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
2: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय

0: शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं। यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
1: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहां पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूं। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज़्यादा हमारी समस्याएं एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण हैं। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज़ जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
0: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
2: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज़ के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना

0: संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ, जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
1: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
2: दुनिया से आगे खुद तक। अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं, समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनी अट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।
3: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेट शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
4: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
3: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय, और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
4: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
3: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: इन द क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में अरे सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के हैं, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोले कि ये स्त्रैण नृत्य रूप है। फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पॉन्स पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनश्वर है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ एंड पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माई कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर। आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स। इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूर्स बहुत अट्रैक्टेड रही। डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊं, ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली प्रेफर।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकीअट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल। अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत, जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं, अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं,

खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपा कशारदा।
0: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपा कशारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कंपोजर भी हैं।
1: बोर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, Dr. Mandapa Kasharada was initiated into music at an early age. She received her initial training in music under Sri IVL Shastri and later honed her skills under the guidance of Sri Komandiri Krishnamacharyulu. Dr. Mandapa Kasharada received her PhD degree for her thesis on the compositions of Pattanam Subramaniam Iyer. She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B-high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swaratarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapa Kasharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपा कशारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव।
1: In tonight's concert, Dr. Mandapa Kasharada is accompanied by श्री महादासु नीलाद्री राव on the violin, श्री सुसरापु सुब्रमण्यम on the मृदंगम and श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ऑन द घटम।
0: डॉक्टर मंडपा कशारदा आज के कार्यक्रम का आरंभ करती हैं बेगड़ राग में संत त्यागराज की रचना भक्तुनि चारित्रमु से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर मंडपा कशारदा बिगिन्स हर प्रेजेंटेशन विद भक्तुनि चारित्रमु, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन बेगड़ रागम आदि ताल।

0: अब सुनिए, शुद्ध धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी। इट इज इन शुद्ध धन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपालय्यर की रचना नीदोच्चारण पंकजमुले, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरल कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वाज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री सुसरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapa Kasharada concludes her this evening's presentation with the Tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam, Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादास सुनीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसराप सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumanth Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम का

कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। लिटिल अंडमान में 2 मिलीमीटर, कार निकोबार वायुसेना क्षेत्र और मायाबंदर में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं और मछुआरों को बताया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मछुआरों को आज से 2 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात के 11:01 और 10 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल सवेरे 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की आठवीं तिथि तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। समय मिला लीजिए, इस समय सवेरे के 5:28 और 35 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।